0: 누나 수라 소달라 논능가 대왕 인가지 다 추보 말이 라라세다 다다 네차저 거라 손으로 누나 라농라 저기서 손으로 세워
1: 응
0: 나라지 아니 생기가 저기 원모도 뭐 이거 대로 가고 손으로 세워 근데 아티무 진된 옛날에 또 아 알람 뒤 가서 가게 인자리
1: 뭐 말이
0: 돈들 니도 다 로디 그 늦은 거 다니데 다 지금 차킹 거 다니데 뒤 가서 나 지금 나완 돈 버리지 소프트웨어 예사가 넘컨스 다치 쪽테리 다 커터리 요선디 거터리 소프트웨어 다 된다니 겨워
1: 여디
0: 아 다티 가서 나 방송에 나 엄마 아 리피 그 차킹 돈 버리
1: 뒤
0: 가서 나 지금 ये रोनी सपोर्ट दे चुके रोनी दबाव ये न्यू आ रहे गिर न्यू ये न्यू आ रहे रोनी तो भी काफी हो गिर गिर कोमा ना बार अंग गिर गिर सुबह को काबली तेज और चिकती होना उन यमसन जी सेम सो जी तो मत कर यंत्र का जी शेख गोना जी शेख माशी वान रहो देना मांझे वान रहो तुम तो यंत्र चपारी तातंगी तो मत सोला तो ना शेख नोनी है मेसु को काफी को सो भी के चकिन तेज हो आ पेटनांगे सो लोकदान तो भी को काफी ngasu yepto tela ngaroni kundo bi khana ki girgin khachi ji mawo yo sare da ngando bi kors me ke yepto tela girgin ni ok
1: yari
0: kitu tudu girgin bi kitu wali girgin
1: ari
0: oh da yintana tani ta ngenda ina parkin ngenda loram to ni pasan bai ke ba tukati yo pare गिरगी नी ते सुतु ई कस चित्र ये हा दी ता जों खु चिक न न जन रस बिस बिन छ खोबा तान जन र ते नबो वई ये ना छोमान जन रस ते वई ये बा हेदो चदु ये ना जन रस ते चदु ये बा तान लोन तो नी पसंद दे जों खु चिक न गन छ लोर ये बा नवा टुपा दे जों खु चिक न गन छ तनी ता सोमा सुतु यो खा कोसा मंदा वन जन र तो दे क्यों ई सा खा करना ཁྱི ཁོ་མ་གི་ ꯒེ་དིན ཆུ་གུ་ ཏ་ཏ་ཨ་བི་ གོ་ ཀ་ལི་ ཇ་ཉོ་ནོ་ ཏེ་ ཁིར་ཏི་ དི་ ཡི་དི་ གོ་ ནོ་མ་ ཧམ་སུན་ གི་ ཡམ་སུན་ གི་ ཇ་རྒྱི་ ཆིམ་བོན་ རྟ་ ཇེ་གིན་ སེ་ཇུ་ དི་ ཏ་ཏ་ཨ་བི་ ཇེན་ཆོ་ ཆིམ་བོ་ ཡི་ས གོ་ སམ་ཇེན་ དེ་ ནོ་མ་ ཉེ་མ་ ཅིག་ལ ཅིག་ ཆོག་ཏི་ ཁ་རོ་མ་ གོ་ མ་ཤོ་དི་ མེ་པ་ ན་དུ་ཤི་གུ་ ཆོ་མ་ལ
1: ནེ་རི་
0: ཏ་ ཇེ་གིན་ ཉི་ གོ་ ཟོ་མ་ ཇེ་ཅིང་ ཨ་བཅི་ ཆོ་ གོ་ ན་ ཏན་ ཇེན་ རྟ་ ལོ་རམ་ ཏུག་ཏེ་ལ ཇེ་གིན་ ཉི་ གོ་ ཟོ་ཏེ་ གོ་ ཇེན་ དེ་ ཏ་ཏ་ཨ་བི་ ན་ ཏ་ ཧ་ཇོ་ ཅིག་ ཏན་ ཆིམ་བོ་ ཏན་ ཏན་ གོ་ ཨ་ན་ जिन मरो वांड द रेस आम जी करते टी कॉप्स करते हो लोग जी चर्चिन दो याना जो जी के जी रिजे से गोना वांड आई थिंक क्या कर रेस आम जी तुम यो करते रवनी ता लोग तो ये भी कॉप्स तो नहीं कर सके हो में छमानो दा रवनी ता खूब चो ला दो भी कॉप्स चे तो रवनी के चे लिख के कोई गमो
1: अरे
0: हां तेरे दा रवनी ला यो तो ठुक गोगी को ठुक तो बता रवनी के
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: क्या युवा मारे तो ना खुब मूर्त के ताने युवा मार दा गिरगे जानी के ताने टीम मारा लालक गई उन दिन चिंपु युवा मा
1: नहीं
0: मारे द तो चिवा ते तो चौंधा मांडो नी तो चिवा मर्जी जाऊँ उस चाज तो आज हम ची कर चिवा उरी
1: नहीं
0: मर्जी जाऊँ उस योता जीविजो माँ बाग उस यंतन तो शीर्ते रंग चोरने की दाद रंग लगने ही गोवाज़ वे मातों के में गिर गिंग के छोमा यो चट्टान से मारे सामजी के रंगा तथर टीम्स लोगों
1: देंगा
0: ये को के होट के दिल जी के को के सब दिल सुनते तलक दिल गोवारे तो को के ये चीज़ में जो रो गोवारे दा ते नौ तो ना यो चट्टर क्या जी के शिव क्या जी के यो चट्टर क्या जी के दे रिनिस दुआ मा
1: देंगा
0: लोटे मर्जी कुंचे जाऊँ सकता हाजम कर चेगे से ताऊ तो ना शिकोसन मर्जी कुंचे नीमी को नावजी दुगिया तर नंदन के पा आ नावजी दुगिया तर नंदन के बाद ना पेट तादा ना गातू को मामदों को नोचन जगता जो ना पेट ना जामतों ने माँ उन्हें रंजी ही से जोड़े तो तावसन चुनना ती तासो जामतों माँ उन्हें रंजी ही से भी फुटते दे छपी को काफ़ी जगह सुन ताने ये ना निपर तो जोना तेला इनका किता रामचूं काम को गत्सचां था रामचूं काम दीगा रोवा मिंगीगा छोरन्या के इनका किता मांगी जांगोज तंगियो पा
1: नहीं
0: रंजी के इनका किता रामचूं काम ना इनका किता तोकरी गोवा याना रामचूं काम ला दक्षिण ही बीगा निश्चित तंबोज यर्जिंद मर्जी कंचे दंग सवारी है सामचू
1: नहीं ओमर
0: ते पर्टां इनका किता रोहिल लो मास का जामचू जी ताना कोवा लो न मारता सातों ने माँग उन जंजी दोस्तों ने ओ नॉन अंचसांग सातों रे दा नाचुगो मरियों सांग सातों रे दा कोवायों सांग सातों रे दा शायों सांग सातों रे दा समझें तो शीज़ दोस्तों ने ला कुंची चक्तो मो
1: यारी गोमर
0: अबे तो आवी के जर्म के तानी हो माला रांशु के रानी भरा सोंदा द जिग चिमना सोनी नंदा आ तनी इनके जिदा लिखिया कर चुई नंदा रांशु को फुमा ती सातों लाती जुका चुदा द तना छोटी ये ने तंगो चिम्बियो तक चक चिम्बियो तदा के तानी ना तो मना खुबियो ने को तंदक चल यों का सी जी ताया चुकता ना कोल फुमा ला रांशु को इनके जिदा ओ गुकर रांबिंग जंजर दा सातों ला दक्षों के गोसाम जिगे पेज ना तुम जुरी ऐसी
1: नरी री री
0: तेरे तो ता निपाग पानी तो चेवाएं के लूट ठक डिग्री ना तुम गोगो ना ताऊ ते माइंग बस उसे यो आ रहे था कि तुम ये किस तरह लाभशाल से होंड आ ते ताऊ इनके किधर यों अंगा तू कुलु को लूट उस ग्रेमो
1: नरी
0: आ तनी हासम दोस्त वोसम हासम वोट
1: हासम
0: वोट वोसम दोस्तों से निगो लूट उस ग्रेमो दो मर्जी कंच ता सोमा सोला तुम्हें नीचे का आपको मांडों को सोमा ये ना होंडा सोचों को सोमा ये ना होंडा ताऊ ने हमारे मुंह से ची हमारे से जो तो कैदन चीनो शीतस
1: नहीं
0: ओया आपको सोमा ला हमारे माचर वाचिक चौमा हमारे निजे माव वाचिक चौमा जब द पांचों के चीन रुप्त ये ना द चीन सब कम पंजर ये ना ची मेरे जानती शंशु ये ना आंध्र यहाँ ना इनका ची द तीजुन जब तो ये ना आंध्र ची थमाला ची कुलुग मार्गो आ थमाना रंग ची जो खोता हो रहा कौन दुख चोनी का तो जिन के शीज चेक याओ ना ची द रुपी नोस्तु ना के द पंद्रह रेवन ये ना समझी को ना दिन वो कमो
1: नहीं
0: तो थामी को नोस्तु ना दें ये ना चंदक लो ने रोटी नोस्तु ना दें दुनिया मास्टर तो मुझे मज़ा दियो मामू
1: नहीं
0: ओ अंदर मुझे ये साला तीन नीपर तो ये कहते थे मामरों नो मार्ग ये ना नीपर तो ताऊ थामा नूसी ही है थामा नूस नहीं है ओ थामा से जो तो जेट आवश्य है ना तो जेटों ना तो वो लड़कों माय भी चेच दानों के तंक को लोस्टों के तंक के जी माँ जी रीति ना माचो का नहीं तुम लोग रहो
1: तर तर
0: तंदरा इंसान है तेज़ घंटे यहाँ उसी है जब तेज़ घंटे जहाँ उसी शियोना रंग से न रे रंग वाले तो की संयोना तो नहीं मुक्की लोस्टों तेरा हाज़ों माँ बना यार नर्सों भी जरम के तोनी किंतु को तंग जोड़ा में मुझे लम्बी जीवन जब आज हम कर चिंबोरे तय था ना लोकचंग इन्ना वाला मांडों इन्ना डा तेज़ वो तो जो डाट गो गंदे ये जितो सब तो चीतन को डा डाटा डां मंचिक वाली ना तुम जितो सन्नी ना तनी टोली 아서 뜻이 통들인다 지금 거침보도 그래도 막 거침보도 되고
1: 여리
0: 아서 뭐 그때 엄마 마음속도 다 좁들라 숨고 있네더니 뒤처 장께 삼고 있네더니 당선 처지 고지만데 게르긴지 마르지 만께 삼다도 엄마 마음속 숨고 있네 때나 속뜻도 인치 뭐지 뽀이 속뜻나 겨짐도 하죠 감동 TV 그 돈덕들 너 게르긴 그 돈덕 같이지
1: 더더더
0: Чимбатон, лобдага гергин ням артык дымы, лобсоти 現在我們阿米安的中國人嘛。嗯嗯。建築路途的那嘛的那,等從的的的的某個個建築的真的是。嗯嗯。路的的那,後面幾年的都個所在的真的是。嗯嗯。都那種用那地路的地方所也可以的是。嗯嗯。啊呀,建築的那個你從嘛路途行的個,阿米安撇地有把某有有把的那個
1: 啊,我們就當比著。哦呀,他其實有一個真的,我都的那件東西也花的有個性。哪裡?啊,咱們提供呢,我們拿了都的。對的。你有個那個氣場上的功能過。哪裡?對的那個,我們的氣感全部的,我們中國呢,給緊幾個的東西的,你要呢,全部的幾個的東西馬的。嗯。
0: 哦呀,古地老祖先都覺得老大的,啊,直接是的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的,直接的, ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ngardan zin bi gummat kemo yin ba ki gergin zaga ki kyos jir jir hobda zaga kyoch ndanda za samlo yo thadi go sa ni bi ti hummat bo so ye pa mo je ya ki jash
2: denga
0: dem dina sa la ri soni go don zaga ndi yo pa man ji minu te to ta
2: ochi mo mar
0: o tanda yin ta na taun yin ge ye shu ni ji ge mukhya te zo ma yin ba ha mi zo mukhya on zo ma yin la ger gen dan zo ki mukhya on zo ma yin ba yim te ji na ni taun yin ge ge ge ka che go si
2: mo mar
0: yer ten chem da ge ger gen dan zo mi ge kun chi zang ni ki ni den ge cha de xia ji ka che pa pe ton mam don lorum ton zo ge na mon to ko pi nyen ton yin da ta ra pa wi na zindag girgin mulu chibdin chargi ye nyoni hachi nyashi yar nyashi tugla mal tugla zindag girgin ye nyoni
2: yari
0: yin chang ronga chimdag chit gi go moto ko ni nyen tong jam bong no lo ma de chun yu se ni go chimdag zu parchi yo ma ni
2: yari
0: lo ma chi yo de nga lo ma de nyom chong yin de zong yin de chi ge dong ju de de chi ge jam ju de se no ma tog de ma lo ma di tong de na yon ten di mu yo de chon en di mu yo se
2: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད མ ཉོ རེད ཁྱི ཕྱི ཁྱི
0: ལོང ལོས ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང
2: ལོང
0: ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང
2: ལོང
0: ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང ལོང
2: ལོང
0: ndo chu roni ko vurji na pa jeg na mares uni ni tia go man chu lo ma ti chu vurji de no lo ma ri ndo ni zo chitr jur go na ki tan ke go go tu chu sen go na ke chu mo uz go jur chu ton da de zo mo uz yo go do ta go man
2: ri
0: o jim sen ti na ni go thomar yin ka che da hama gir gi ni ga nyam dir gi nyam dir yin ni ma de pa ma su ran ko vurji ko chim da chim to ko na na yo pi go tir go ka chun gongso yo na, gergen so la, maasang chongwa xe na, bazit, on di loma den de tawi cho yo, da nipar da jirgo samji go, chayi zi kong rwa.
2: Nari.
0: Da kar che ge, samji, di moos gyan la, da tangon bo xe.
2: Nari.
0: A moos gyo ke da, ti tsik anto me xe ge, ri.
2: Nari, rindang ge gergen tarong ka
0: bian. Ya, ma ser na, ma zongwa kanda xe chek go wa de, tari, ma zongwa zi chek go na, nipar da, ਸੋਮੀ ਰੋਂਦੁਕ ਚੋਸਮ ਜੇ ਚੋਂਚਾ ਮੌਜ ਜਿਰਚੂ ਤੋਨੀ ਮਜ਼ਾਂ ਉਸ ਗਾ ਚਿਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਰਸ
2: ਨੋਮਰ
0: ਤੇਲਾ ਤੋਮਰ ਸੋਮੀ ਰੈਂ ਨੀ ਰੈਂਚਿਨ ਤੋਰੀ ਗੰਦੇ ਸ਼ਿੰ ਤੋਰ ਜੇ ਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਿਕ ਕਰਚਿੰ ਬੋਂਡ ਦੇ ਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਕੋ ਜਿੰਦਨ ਦਾ ਤੋ ਦਨ ਜੰਕ ਯੋ ਜੰਡਾ ਜੀ ਨਾ ਨੀ ਹਰਾ ਉਗੋ ਦੀ ਚੂ ਚੋਂ ਜੋ ਕੰਦੋ ਰਾ ਚੋ ਨ ਸੋਮਾ ਦੇ ਨਾ ਗਿਰਦੀ ਹੋ ਸਾ ਯੋ ਗਿਰਦੀ ગોંડર કે નિંદા ગોંડની ગો સોમાસ કે જોગો કી તંગા દિના ના ગાવા કે બોયો જી કરે છો નોમા ગો જોગો કી ના જો ચોન દેદા ન્દર ચો મારે છે
2: નરી
0: જો ચોન દેદા ચો યો ન માસે જી તિન દિના ના ના ગે ગિન દેદા ચો અંક ફોન યે દેસ ફુ નોની કે ચોન છો કુ શી તો નરી છો મોને તો દે ચો નોમા ગો ઓરી આ જી
2: ちょっとま、まわちゃって、てらみんごどだと、ちょにぞんをちょそんです。んずりなとパだ、たんだいな。そんなて、さくどちょんでじゅちゅや。なり。だそはとんかちぼどり。のま、らんごごたんくごちょんぐりやち。あ、てかちま。たんそのままもずが。じゅりてか、ちょんよのししかもんねんかも。うんうん。たんでして。にんかろんじんちゃんずだ、たけんろんじんやつ。なり、ごま。
0: 어좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 Normandy, Ronchin Dimusin, the Normandy Kunchin Dimusin, the Normandy Gawkin Dimusin, the Normandy Merkas and Dain Samson, Merkas as a Yinchimichi Utsgildana, Normandy Simpeon, Garamons of the Simga, Dumumon, the Yangom.
2: Readless, hm?
0: The Dagger, the Tomoma, and Yamjinichi.
2: Nadi.
0: And in Pago Korea, Lumi Nasunjur Koryuton. The Mirgin Kutsuchi was under the Lumi Nasun Konkuryuton, Jerem Tela, Julie, the Girgins, the Gurma, the Sorkan Gona, Tom Loma, the Jabjon. Soa, don't you chosen the Julie?
2: The Dinka.
0: I know my Jepchi Shirna, the Kayar and Coroner, the Toma Kanko Luchi, the Lalatin and a Jechimbo Yoner, Lala, Ton Yoner, Lala, Hamanyan Don Yoner, Lala, Hayon Yoner, Lala, Hamin or Mayon Yoner, Lala, Hamanya Men Yoner, Lala, Hami Kin Yoner, Lala, Hami Merkin Yoner. Lala, you got the Tokosa Union, you know my Yoner. But Tanra in Tana, no Matti, Jabjola, Hajo, the Egypt go, Girdins, you took a Shana. Di lomban dulu ke tanah yang kecilan di cina, cik apa yang lomban lala yang kecilan madu mana hal itu way wamamu.
2: Nari,
0: dia binti hal itu sabi itu. Lomban lala juga, ayah hal itu yang ramai orang mamu.
2: Nari,
0: ayah dia orang yang kecilan ni pasti madu itu sewa itu sabi itu birgin itu solo do tago. Dia lala tu cik ramchin tu bocah. Tak malu ni aku cerita tu, tapi dengan sabji sabtu sendiri tuan tuan ni, ni nama ni sedap. Sabtu sendiri tu juga tak, semua sendiri tu nanti ya kasih.
2: Nanti.
0: Nama rede lah sendiri tu itu ada. Wan di nama di jawab yang dimuin dek, gak yang dimuin dek, cun dimuin di nama dia. Kokai nipah dimuin sam dah. Tapi tu juga ni nanti cuma ya kejadian sam juga tu, tanda nipah dia ingat lah.
2: Nanti.
0: Nanti tanda sebab tu semua gak yang tuan. champak chertep ge shirb la julen la khoshe je pa to la ke kondan da wonder de da no mari de la ko ke gafin wo kum
2: hm
0: la ko